0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जन भागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाए। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्र सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रूपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक टीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रूपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और कंटीले तार की वायर लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाढ़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर टू मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही

समाप्त करनी चाहिए। आकाशवाणी में वह भोज केंद्र है, प्रस्तुत है कृषि माहिती, संदर्भ साहित्य पर आधारित आजनी माहिती विषय है।

잠깐이 누나 사연 유튜브라 해해. 방긋 얼헝만니 라는 게 길리니 고스갓 락셔 세나니 아시 우탈부갈 무자니 마누 두 만드라젤 사무드만 탐가를 해흠. 딘까 안트후아 अनेक अजरों का संघार करके अंगद और हनुमान श्री राम के समक्ष उपस्थित हुए, लेकिन उनके युद्धभूमि से हट जाने के बाद राक्षस एक बार फिर वानर सेना पर टूट पड़ी। आसुरी माया से राख, पत्थर और रक्त की वर्षा होने लगी। चारों ओर अंधकार छाया देख वानर सेना में खलबली मच गई।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की जेल, 3 माह में पुस्तकालय

0: نیپرک میت سکول به اونجا سی پروژیک شامل هم شامکو شیشا اندباد شیرمه سورک شکر مایه مطا میدون پرسرمه من نیمت حسن دورم در آر دیمجی پرامی بھارت مطا سکوار کا اپگاردن کریں گے شامکو گرمنٹری شاہی باگ سرکی جاس میں ایک اچھ سیئے بیٹک کی اندیکشتہ کریں گے جس میں آگامی اولمپک راشت مندل اور ورلڈ پولیس آن فائر گیمز کی تیاریوں اور بنیادی ڈھانچے کی سمیکشا کی جائے گی اپارا خون آکاشوانی سماچار احمدآباد
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और कटेले तार की बात लगाने के लिए करीब 145 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाढ़ लगाई जा चुकी है। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को पूरा करने का आग्रह किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने हैदराबाद की कंपनी क्विंट एडुटेक को परीक्षा मूल्यांकन का कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने में किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने इन आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया। बोर्ड ने कहा कि कंपनी को अनुबंधित करने में उसने सामान्य वित्तीय नियमों का पूरी तरह से पालन किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए सरकारी नियमों के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की गई थी। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 245 रन बनाए, जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफाई 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मैच खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlines that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. During the 54th Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors, covering 9 states worth around 40,000 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, SARTHAK PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle board period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding the Cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
3: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। 3 मेजर
2: major reforms have been introduced in this program today. First, the government will support the transportation cost incurred in moving food grains from large FCI warehouses in the states to fair price shops across different districts and regions. Second, there was an

संबंधित जिला में निवासी अधिक पुष्टि ने आज आंगनबाड़ी केंद्र में थी 6 महीने की 6 वर्ष सुधी में बालकों ने सगर्भा महिलाओं ने तथा भूत माताओं ने मन का आहार बना के कोई फरियाद हो तो संबंधित जिला पंचायत में फरियाद निवारण अधिकारी श्री ने अर्जी के फरियाद कर सकते हैं। जो अधिकारियों ने निर्णय के संतोष नहीं था तो गुजरात राज्य अन्न आयोग गांधीनगर में सीधी अर्जी के अपील करी न्याय निर्देशकों को। फोन नंबर 0702-232-5400।

आकाशवाणी भुज समाचार शीतल योजना वाचे छे। नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक बाबतोनी समितिए जाहिर वितरण प्रणाली अंतर्गत राशन परिवहन और व्यवस्थापन सहाय योजना सार्थक पीडीएस ने यथावत राखवा मंजूरी आपी छे। आ माटे केन्द्र सरकार द्वारा 25,530 करोड़ रूपयानी फाळवणी कराशे। नवी दिल्लीमां पत्रकारोने संबोधता केन्द्रीय माहिती अने प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवे कह्युं, आ योजना राज्यनी संस्थाओने आंतर राज्य अनाज परिवहनमां मदद पूरी पाडशे। वाजबी भावनी दुकानोनी मददरूप थशे अने जाहेर वितरण प्रणालीने आधुनिकीकरणमां मदद करशे। વિકાસ કાર્યોમાં થતા વિલંબને ટાળવા માટે નવી એસઓપી બનાવાશે। ગઈકાલે

0: سرحد سرکشا دلنے سونپی અને દેશના વિવિધ ભાગોમાં આજે ઈદ અલ અઝહા ધાર્મિક ઉત્સાહ અને ઉલ્લાસ સાથે ઉજવવામાં આવી રહી છે. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ આજે ગંગટોકના પાલજોર સ્ટેડિયમ ખાતે સિક્કિમ પોલીસને પ્રતિષ્ઠિત રાષ્ટ્રપતિ પોલીસ ધ્વજ અર્પણ કરશે. સિક્કિમ આ પુરસ્કાર મેળવનાર દેશનું 15મું અને ઉત્તર પૂર્વમાં ત્રીજું રાજ્ય બનશે. રાષ્ટ્રપતિ પોલીસ ધ્વજ એ દેશના કોઈપણ પોલીસને આપવામાં આવતો સર્વોચ્ચ ઔપચારિક સન્માન છે, જે અસાધારણ સેવા, અટલ શિસ્ત અને રાષ્ટ્રભક્તિના સમર્પણને દર્શાવે છે. સિક્કિમ પોલીસના 400 ગૌરવશાળી સૈનિકો, એક વરિષ્ઠ પોલીસ અધિક્ષક, સરના અધિકારીની આગેવાની હેઠળ રાષ્ટ્રપતિ સમક્ષ પરેડ કરશે. આ સન્માન સિક્કિમ પોલીસના બહાદુર સૈનિકો દ્વારા જનતાની સેવા અને રાજ્યનું રક્ષણ કરવામાં દર્શાવવામાં આવેલી પ્રતિબદ્ધતા, બલિદાનને ગૌરવપૂર્ણ શ્રદ્ધાંજલિ છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સ્વચ્છ ભારત મિશનના બીજા તબક્કાના અસરકારક અમલીકરણની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકતા કહ્યું કે આ અભિયાન ફક્ત માળખાગત સુવિધા પૂરતું મર્યાદિત ન હોવું જોઈએ, પરંતુ નિયમિત દેખરેખ, જનભાગીદારી અને વિવિધ લાભાર્થીઓ સાથે સંકલન દ્વારા નક્કર પરિણામો સુનિશ્ચિત કરવા જોઈએ. નવી દિલ્હીમાં 51મી પ્રગતિ બેઠકની અધ્યક્ષતા કરતા પ્રધાનમંત્રીએ રાજ્યોને કચરાના વ્યવસ્થાપન સાથે જોડાયેલી યોજના અને ગોવર્ધન પ્લાન્ટના નિર્માણ જેવા કચરાના વ્યવસ્થાપન પ્રોજેક્ટને વિગતો વિનંતી કરી. પ્રધાનમંત્રીએ 9 રાજ્યોમાં રેલવે, વીજળી અને માર્ગ ક્ષેત્રોમાં આશરે 30,000 કરોડના 7 મહત્વપૂર્ણ માળખાગત પ્રોજેક્ટ્સની પણ સમીક્ષા કરી હતી. એક અહેવાલ સાંભળીએ.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया. सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया. केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतर्राज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है. श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतर्राज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया. राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी, अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके. अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
0: बैठक की शुरुआत में कैबिनेट सचिव ने माहिती आपी हती कि प्रधानमंत्री ना निर्देशों अनुसार राज्य स्तरीय सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं माटे मासिक समीक्षा प्रणाली पण शुरू करवामां आवी छे. केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात की मुलाकात है. मुलाकात दरमियान श्री शाह अमदावाद और गांधीनगर जिले में आश्रय 12 जाहिर उपयोगिता, शिक्षण और ग्रामीण माखाकीय सुविधाओं प्रोजेक्ट्स उद्घाटन और शिलान्यास करते. हमारे संवाददाता अपर्ण कुंभ अहवाल संभालिए.
2: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नव निर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है. शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में सोलह क्षेत्र में आए माता उम्मीदवार परिसर में नव निर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे. शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी. अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद.
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यूरोपियन संघ ने विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक जिनमें भाग लेवा साइप्रस पहुंचे छे. सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री यूरोपियन कमीशन ना प्रमुख काया कल्लास और साइप्रस के विदेश मंत्री डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस को आमंत्रण बदल आभार मान्यो हतो. केंद्रीय कृषि और खेडूत कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 माटे कृषि पर राष्ट्रीय परिषद नु उद्घाटन करशे. 2 दिवसीय आ कार्यक्रम में વિષયોની ચર્ચાઓ, રાજ્યવાર ભાગીદારી અને મહત્વપૂર્ણ કૃષિ સંબંધિત મુદ્દાઓ પર પ્રસ્તુતિઓનો સમાવેશ થશે.

सुगम संगीत तो कार्यक्रम गीत सुधा नौभाग्य प्रायोजित कार्यक्रम उमंग रजू सस्य कार्यक्रम प्रायोजक NCERT मिनटे संत वाणी रजू सस्य 10 बजे हिंदी फिल्म संगीत तो कार्यक्रम मनोरंजन 11 बजे लोक संगीत 11 बजे कच्ची फिल्म कार्यक्रम आप मानी सक्षम कार्यक्रम प्रस्तुति विष्णु घोर 4 बजे हमारा बदमाश कार्यक्रम हमें अहमदाबाद वडोदरा केंद्र पर थी रिले करीशू हमारी बीजी सभा नो आरंभ थशे 5:30 हमारी बीजी सभाना तमाम कार्यक्रमों અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર પરથી રીલે કરીશું.

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभाग के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली सड़क

0: समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाए।

0: अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हो, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों के आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेरवा गांव की जेल, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नया प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में सोलह क्षेत्र में आए माता मैदान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और बेंजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शहीदबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभाग में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
4: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार उपयोग हुए हैं। सबसे पहला जो सरकारों के एजेंसीज राज्य

0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुगंध अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए एक कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई है। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल है। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
1: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिन तक भीषण लू की स्थिति बने रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
2: मध्य प्रदेश में इस बार वातावरण में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साफ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है।
0: ईद उल अजहा आज देश कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
3: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक रानी कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, ये मातृभूमि तुम्हारा

0: बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज की समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी। धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक टेस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मानसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है। अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा हॉर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलीडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, कोलकाता में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा। इसके साथ ही समाचार प्रभाग का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi chairs 51st Pragati meeting in New Delhi. Reviews 7 critical infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Union Home Minister Amit Shah asks authorities to demolish all illegal structures within 15 kilometers of international border. Heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 days. Eid al-Azha being celebrated in different parts of the country today with religious fervour. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Sunrisers Hyderabad. 7 runs in eliminator match in New Chandigarh. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. During the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management-related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors, covering 9 states, worth around 30,000 crore rupees. We have a report.
2: While reviewing power sector projects, Prime Minister emphasized the need to accelerate rooftop solar adoption across urban areas with a special focus on cities, residential clusters and public institutions. He underlined rooftop solar should be taken up in mission mode to reduce electricity costs, improve energy security and promote clean energy at the household and community level. While reviewing road and port connectivity projects, it was emphasized that broadband port should be developed as a model of port-led multimodal development where every major mode of transport is seamlessly integrated to create a future-ready logistics ecosystem. Mr. Modi said the project should not be seen merely as a port but as a national gateway connected through coastal shipping, inland waterways, dedicated freight corridors, high-speed rail connectivity, highways and airport linkages. While reviewing Ken Betwa River interlinking project, the Prime Minister observed that Ken Betwa project should serve as a model for other states to resolve interstate water issues through cooperation, timely clearances, technology-based monitoring and mission mode execution. Anpramush, Aakashwani News, Delhi.
1: The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling, Income with Automation in PDS, SARTHAK PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission's IT award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding the Cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
3: This program may aim bade sudhar aaye upon hai. 3 major reforms have been introduced in this program today. First, the government will support the transportation cost incurred in moving food grains from large FCI warehouses.

जोर से बड़ी रुपये की वधुनी के मित्रों ने मादक पदार्थ पकड़े। कच्छ जिले में नवनियुक्त कलेक्टर अनिल कुमार राणा ने सिलाई ऐतिहासिक महत्व धरावता लखपत धाम में मुलाकात ली थी। विश्व ने कुर्बानी में संदेश आपता कुर्बानी ईद एटले की

आकाशवाणी भूज केंद्र छे प्रस्तुत छे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आ कार्यक्रम प्रायोजित छे NCERT।

0: सभी श्रोताओं को विनेश का नमस्कार।
1: हाँ, अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार जो हमें छत्तीसगढ़ पथेरिया भरेवा से चंद्रलाल सिंगराव जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
0: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
0: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
1: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
0: ग्राम पेपर लोग सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवमेश्वर।

0: से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनिलिया जी का।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए
0: हमारा प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फोन ट्यूलिप की, और जाना था इसके रोचक बातों को। खासतौर से यह जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया, और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
1: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है, इसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
0: क्या नाम है भैया?
1: रजनीगंधा।
0: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है दिनेश जी, लेकिन जरा शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है, रजनी और गंधा।
1: जी चलिए श्रोताओं, अब इसे और गंभीर से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात थी, और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात है ये कि रात में सबसे अधिक महकता है।
0: जी, दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
1: विवाह, सजावट, पूजा, स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
0: और विदेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है, जो दक्षिण अमेरिका का एक देश है।
1: जी, मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
0: लेकिन दिनेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
1: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
0: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
1: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
0: और क्या बात है?
1: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उठ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है।
0: जी, ये बात तो है।
1: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
0: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विनेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं, इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है।
1: जी
0: विनेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहते हैं कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है।
1: जी,
0: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है।
1: जी जी जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
0: अब भेज दीजिए अपना उत्तर 8800044559 पर, जो हमारा आगे नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciit.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो सुबह अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों के, तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतिकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: साथ ही
1: जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम डेनी डियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चित्र विजेता ग्रेनेड और योगेंद्र सिंह की वीर यात्रा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का

0: साथियों, ये पंक्तियाँ महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रची थी, जो भारत भूमि के महात्म्य को बड़ी सजीवता से उजागर करते हैं।
1: सच है कि भारत की मधुमेह माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितने की जाए

0: भारत माता के दो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लिए जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है। अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
0: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहेर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
1: उनके पिता रामधरन सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आए और वो उनसे भारतीय सेना के वीरता की कहानी सुने।
0: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
2: बहन जी, डाकिया।
0: अच्छा, खोलते हैं भैया।
3: अभी कहीं
1: आपके भाई के लिए एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्टर से। वो घर में है क्या?
3: नहीं, तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
1: तो कोई बड़ा है घर में?
3: हाँ, घर पर माता जी है ना।
1: हाँ जी, बुलाइए।
0: हाँ,
2: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
0: अच्छा, आ रही हूँ जी। कहिए।
1: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
0: अरे, ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखो तो।
2: आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
0: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ये बेटा देखो जरा, तेरे नाम में चिट्ठी आई है।
2: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई है लगता है ना, जरा देखो तो।

0: और मैं इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस घर में एक ही घर से तीन तीन फौजे होंगे।
1: हाँ जरूर बेटा जरूर, ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
0: ऐसे नहीं, आज तो घर में

0: this wedding at your kitchen.
1: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति भारतीयों में होने की वजह से कमजोर थी, क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तान ने भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
0: ब्रिगेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कुमाऊं रेजिमेंट की महा

0: पर बर्फ से ढके पहाड़। दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनके प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
1: सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम

वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़े रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लेटफॉर्म पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर

0: हजार और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ब्रिगेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में तीन गोलियां लगी और वे बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें अभ्यास हो गया था कि यही समय है।

घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल आर्थर मिला कर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी यहाँ तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।

पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे।

0: योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
1: बाद में तत्कालीन सेना अध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा किया।

योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ब्रिगेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन।

अभी आप सुन रहे थे वेद गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। तकनीकी निर्देशन बटीलैन लिंगो। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोजर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और RS रघु। ध्वनियांकन विकास सांगवान और शामुख सिंह। निर्माण सहयोग जगबंधु जाना। आलेख अजीत होरो। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी।

महाराष्ट्र रणपुर प्रस्तुत छह मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक में सिक्किम पुलिस में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज अर्पण करते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन में नियमित देखरेख जनभागीदारी और विविध लाभार्थियों साथ संकलन द्वारा मकर परिणाम सुनिश्चित करने जनाव्यू। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात की मुलाकातें अहमदाबाद और गांधीनगर में विविध प्रकल्पों लोकार्पण और खातमुहूर्त करते। केन्द्रीय कृषि मंत्री आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 कृषि राष्ट्रीय परिषद का उद्घाटन करते। देश में विविध भागों में आज ईद अल अजहा धार्मिक उत्साह और उल्लास साथ उजवी आ रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आ रविवार 31 मई न रोज आकाशवाणी पर प्रसारित थनारा मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश समक्ष विचार रजू करते। खेड ने तार फेन्सिंग सहाय में वारो करने राज्य मंत्रिमंडल निर्णय। कच्छ सहित समग्र राज्य में शनिवार मंगलवार चार दिवस गाड़ा राज्य में अलग अलग स्तरे पवन गाजवीज साथ वरसाद वरसवा आगाही। इबोला वायरस अंगे राज्य सरकार सतर्क होगरिकों गभरा जरूर नहीं आरोग्य मंत्री प्रफुल्ल पैंसरिया कहू। आईपीएल क्रिकेट एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स

0: सूचनाओं का पालन करें और अपने नियमों से बचो।
1: हीट वेव यानी कि लू की बचाव न करें, बल्कि चारों तरफ से बाहर निकलने लगी हाथों में सुतरा सफेद कपड़े की धोती तथा खुला कपड़ा पहनना। बालकों, सगर्भ स्त्रियों और महिलाओं तड़का में विशेष काळजी लेनी।

0: वचन रखना और मेरे माँ सुरक्षा सूचना का पालन करो तुम्हें यू के बचो
1: ठीक है
2: महमूद रफी ने युगल स्वर सांभरी फिल्म शतरंज

सर्वत्र हिंदी फिल्म संगीत न कार्यक्रम मनोरंजन आप आकाशवाणी ना भोज केन्द्र पर संभव छो। प्रस्तुत गीत में युगल कंठ आप किशोर कुमार सुलक्षणा पंडित फिल्म।

आकाशवाणी भुज आज गरुता पहनी जो मन पसंद कार्यक्रम फोनी आज पसंद कार्यक्रम प्रस्तुति विष्णु गोर टेक्निकल सहाय राजेश भाई गढ़वी प्रसारण आकाशवाणी भुज।

0: gente tá te falando em média, parceiro.
1: Eu vou
0: pra lugar
1: meu,
0: vou pra lugar meu, vou pra lugar meu, vou pra lugar meu, vou pra lugar meu, vou pra lugar meu, vou pra lugar meu, vou pra lugar meu,
1: vou
0: pra lugar meu, vou pra lugar meu, vou pra lugar
1: meu,
0: vou pra lugar meu, vou pra
1: अच्छा
0: भाई सारे लोग मुझे बहुत पसंद के चुके क्या रहे हैं भाई
1: जी
0: भाई हमने श्रोता मित्र ना जी हमने श्रोता मित्र ना आज मन पसंद के जो गीत प्रस्तुत है अच्छा सर मैंने भाई हेलो आकाशवाणी पेज का की फोन है ना जी बस बस बड़े भैर किए जी जी अब्दुल भाई किए बस तकरीबन बड़े भैर कई पति घर में आकाशवाणी परिवार की तरफ से क्या गीत सुन रहे सुनो आज मन पसंद की जगह हेलो आकाशवाणी बहुत अच्छी फोन है आज पसंद क्या कहूँ नाना रिजा थी अल्ताफ भाई जी अल्ताफ भाई की आया मैं सब एकदम बड़े बड़े की आया जी जी अच्छा बैठी बैठी आज फोन लगो अच्छा बड़े बड़े करे जो काम काज करा होता अल्ताफ भाई अच्छा मैंने तेरी पेटी घर में आ बैठी पानी पियो तो वधारे जी जी अने आज क्यों गीत सुन रहा हूँ भाई सुनाए ना क्यों

0: Sprech wohl über Stadtschiffung, wenn Sie passen.
1: Hey,
0: ich bin da. Ja, sag mir dann mal, wie
1: Hari
0: Mariam Bhai, क्या है पैसे घर में?
1: घर में हो रही है लो लगे थे।
0: लो लगे थे आने में तो आज ही हुआ अच्छी तरह तो है ना आधर में।
1: आधर में आप बोल रहे
0: हैं? जी जी जी जी।
1: क्या है? तो मैंने एक दिन हमारा गीत को बढ़ा है जिन लोग इस दिन में।
0: भले आकाशवाणी फाइबर पर तो थी आम नहीं कि एक बजे से जी कर रही हूँ बारक बात दूँ तो
1: हमें जी
0: एक गीत सुनते मरेंगे

0: 안녕하세요. 아까 쇼는 보지도 치프로 아직 봤어요?
1: 무슨 장면으로
0: 봐? 뉴지 대본하다?
1: 아니
0: आज ये एक आदत है आपको भक्ति जी
1: के
0: भजन सुनाई दियो। भाई भक्ति जी के भजन सुनाई दियो। आज मन पसंद की जो गीत है तेरे परिवार में
1: मुझे
0: जवाब ये दिखा मुझे और चौक वाले जाते हैं ये भी आए विषय जी के आज ये संपूर्ण परिवार में आज मन पसंद की जो गीत प्रस्तुत है।
1: धन्यवाद
0: भक्ति जी विष्णु भाई।

0: कक्षी फोन है ना जी पसंद?
1: नमस्ते,
0: क्या बोलता है? जी बंसी मैं इनके आया
1: हूँ।

0: संवेदना आयोग का सफर हुआ साथ ही जुड़ाइए प्रशिक्षण कार्यक्रम सूर संगार। नमस्कार, आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के उपलक्ष्य में प्रस्तुत है सूर संगात, एक विशेष श्रृंखला जहां सूर साधना और संस्कृति का अद्भुत संगम होता है। आज के संगीतमय कार्यक्रम में हमारे साथ है ऐसे विशिष्ट कलाकार जिन्होंने ख्याल, गजल, भजन, बाले, संगीत और शास्त्रीय गायकी के माध्यम से संगीत साधना को नई ऊंचाइयां दी। पटियाला घराना की समृद्ध परंपरा, आकाशवाणी से दशकों पुराना आत्मीय रिश्ता और देश विदेश के मंचों पर भारतीय संगीत की अनुपम प्रस्तुति, उनकी यात्रा केवल एक कलाकार की नहीं बल्कि भारतीय सांगीतिक विरासत की यात्रा है। आइए स्वागत करते हैं हमारी आज की विशिष्ट अतिथि श्रीमती सुमित्रा रॉय चौधरी जी का। स्वागत है आपका आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियो में।
1: तो मैं भी प्रणाम करती हूँ आकाशवाणी को, ये मेरा अपना अनुभव है। एक्चुअली जब तक हम सरेंडर नहीं हो तब तक कोई काम नहीं होता है, अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कई बार मैं बड़ौदा से आनंद से आती रही हूँ, गाती रही हूँ। यहाँ के जो संगीतकार है, यहाँ के जो म्यूजिशियंस है, हमारे कंपोजर है, उनके साथ बहुत आत्मीय रिश्ता रहा है हमेशा। तो लेकिन इस बार बहुत सालों के बाद आया हुआ, ये कभी नहीं सोचा था कि 90 साल की पूर्ति के लिए आप लोग मुझे बुलाएंगे।
0: जी मैम, तो ये जो आकाशवाणी 90 वर्षों का जो असाधारण यात्रा जो है, तो साथ में आपकी भी यात्रा चली है आकाशवाणी के साथ, उस यात्रा के बारे में कुछ बताएंगे।
1: इसको यात्रा ही कहा जा सकता है, क्योंकि अब थोड़ा सा अगर मतलब व्यक्तिगत अगर कुछ कहूँ तो ऐसा है कि मैं उस जमाने की हूँ जहाँ पर घर में एक रेडियो होना ही बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। बड़ा सा रेडियो मेरे दादाजी का था, हर एक को सोने में दे देते थे। सिर्फ उनको था कि खाली न्यूज के टाइम में जाके बैठेंगे और बाकी छुने भी नहीं देंगे। लेकिन उसके अंदर मेरी माता जी बहुत ही मसूरी थी, लखनऊ की थी, उनके पास संगीत के तरह तरह के आयाम थे, तो उनको वो छुप छुप के सुनना देख देख के मुझे भी बहुत अंदर से एक कुछ तो होता था कि मैं भी रेडियो सुनूं। छोटी सी थोड़ा सा तभी मुझे लगता था कि रेडियो तो कोई खास बात है, इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता है म्यूजिकली। और ग्रामोफोन था हमारे घर में, जो हाथ से घुमा के ग्रामोफोन चलाया जाता था, वो दादाजी का था, तो उसमें कुछ रिकॉर्ड सुन के कान पक गए लेकिन फिर से सुनते थे। तो ऐसे करते करते तो जो भी हो शास्त्रीय संगीत सीखना घर में शुरू हुआ। अच्छा, उस वक्त अभी तो मैं सिखाती हूँ इलेक्ट्रॉनिक तबले में, उस वक्त तो संगीत के गुरु जी के साथ एक तो तबले आया करते थे।
0: अच्छा,
1: क्योंकि मेरी माँ को लगता था नहीं तो तार की कच्ची हो जाएगी, उनको लगता था। हालांकि साधारण परिवार, इतने अफोर्ड करने की बात नहीं थी, लेकिन उनको लगता था जो करो ठीक से करो। तो ये बात तो ऐसा करते करते लगभग स्कूल का जो खत्म हो रहा था समय 15 वर्ष के करीब करीब, तो मैं भी एक बार उनको जो वो हमारे साथ बजाने आते थे, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, तो घर से छुपा के मैंने उनका सहारा लेकर मैंने रेडियो में अप्लाई किया।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: तो कौन सा साल
1: हुआ? मैं ये था 69 या 70।
0: ओके,
1: मतलब रेडियो के हिसाब से रेडियो में 17 साल से स्टार्टिंग होती है, और छोटे ही थे हम। उन्होंने कहा अगर वापस अगर दे देंगे फोन तो ये नहीं करना, डॉक्यूमेंट बनाना। तो रेडियो वाले ने देखा ही नहीं उस समय कुछ, मतलब सामने मैंने मैट्रिक का एग्जाम, मैट्रिक कहते थे तभी 10वीं का, कॉल आ गया। जब कॉल आ गया तब घर में जो मतलब धमाका मचा, किससे पूछ के तुमने किया? किससे पूछ के किया? मैंने कहा मैंने उनसे कहा था, उन्होंने ला दे वो ला, अब क्या करोगे? और अब यकीन मानिए उत्कर्ष जी, बहुत से ज्यादा गाने मेरे पास नहीं थे।
0: अच्छा।
1: तो कुछ भी हो, लेकिन मम्मी को समझाया बुझा के समझाया, डांट खाते खाते रिक्शा में बैठ के रेडियो स्टेशन पहुंचे, ऑडिशन दिया। तो उस समय बी ग्रेड या सी ग्रेड क्या होता था मुझे याद नहीं, उस समय कुछ तो होता था बहुत कम, जिसमें 30 रुपया सिर्फ फीस हुआ करती थी। तो मैं उसी में खुश।
0: उस दिन आपने क्या गाया था?
1: मैं बताती हूँ आपको। मुझे अभी तक याद है ये गीत भजन में मैं पास हुई थी।
0: अच्छा।
1: हाँ, आज मैं गजल में मैंने बहुत मेहनत की है लेकिन तभी गीत भजन।
0: हाँ।
1: गीत भजन और यूपी बिहार की हूँ तो नेचुरली मुझे वो रामचरित मानस थोड़ा सा ये कल्चर में है ना हमारे यहाँ तो वो सब आता तुलसीदास तुलसी रामायण वगैरह आता था तो जितना भी आता था घर में जितनी संस्कार जितना था उसके हिसाब से।
0: अगर आपको याद है तो उस समय आपने जो गाया था वो आज अभी हमारे श्रोता
1: मैं एकदम पहले प्रोग्राम का पहला गाना वो जानकी वल्लभ शास्त्री करके एक पोएट हुआ करते थे हिंदी में तो उनका एक गीत हिंदी गीत
0: जरूर
1: अगर इतने सालों के बाद अगर शला कीजिएगा अगर भूल जाए

0: ऐसा ही कुछ था। आगे बात करें तो जाएगा, लेकिन ये 15 साल की उम्र में मेरा पहला रेडियो प्रोग्राम था।
1: क्या बात,
0: तो ये रेडियो के साथ अगर जुड़ने की बात कही है तो इससे ज्यादा और कुछ।
1: ये हमारे लिए एक बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस हो गया आज जो आपने गाया।
0: उस समय एक और इंटरेस्टिंग बात है, उस समय रेडियो से गीत आते थे, रेडियो से गीत आते थे। आप उस समय के किसी को अगर जिंदा है वो तो बता सकते हैं कि रेडियो से गीत आते थे, उनको आप कंपोज कीजिए। अच्छा, कंपोज कर रहे हैं मतलब बहुत बड़े कंपोजर बैठे हुए हैं, मैं बता रही हूँ ऐसे। उस समय कंपोज करना तो आता नहीं था। अरे मेरे गुरु जी शास्त्रीय संगीत के गुरु, मैं ऐसे बैट म्यूजिक पसंद नहीं करता, मैं नहीं करूंगा तुम्हारे लिए कुछ। तो उसके बाद मैं क्या बेचारी क्या करूं, जो राग जानती थी उसी राग के ऊपर बैठा के गीत कंपोज करती थी। तो वो आज सोचूं तो उस समय के लिए वो कोई लेवल नहीं था, कोई लेवल नहीं, क्योंकि उस तरह का गीत राग के ऊपर आपने कुछ बैठा दिया, आपने शब्दों को बैठा दिया, सुर को बैठा दिया, तो वो कोई खास बात तो नहीं बनी। उस अभी मैं जानती हूँ कि गीतों के शब्द के हिसाब से, क्योंकि मैं अप्रूव कंपोजर भी हूँ आज रेडियो की, तो अभी मैं जानती हूँ कि कैसा होना चाहिए। क्योंकि मैंने जब खुद इसका कंपोजिशन पर जब गाने दिया तो एक एक मैंने नोटेशन करके मैंने दिल्ली को भेजा था।
1: क्या बात,
0: एक एक नोटेशन करके। हाँ, वो मुझे अभी भी लगता है मैंने कैसे कर लिया। तीन, एक भजन था, एक गजल थी, एक गीत था, तीनों का मैंने बिल्कुल, अब वो सचमुच मेरा हार्ड वर्क वाला कंपोजिशन था और मैंने सचमुच करके दिया ठीक से, एक ही बार में वो दिल्ली से थ्रू होकर आ गया।
1: बोला एक गजल थी, हमारे श्रोताओं के लिए गजल हो गया।

0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: जहां तक मुझे याद है मेरे माता जी शास्त्रीय संगीत के पर खुद पटेल पंडित रतन धनकर की शिष्या थे। हम बहुत ही छोटे जगह पे बड़े हुए बिहार में, नॉर्थ बिहार में। अच्छा। लेकिन फिर भी था कि नहीं जो गाँव तो ठीक से गाँव ये गाँव। उन्होंने जब तक मैं घर पे रही तब तक तो शास्त्रीय संगीत ठीक से सिखाया, लेकिन वो मेरा भाग्य था या उनके विचार का तकाजा था मालूम नहीं, जल्दी ब्याह कर दिया उन्होंने। तो उसके बाद मैं इटली चली गई। इटली चली गई, वहाँ 17 साल
0: के लिए संगीत से जुड़ा
1: हुआ था। कुछ नहीं कुछ नहीं, वो पूरा संसार में झोंक दिया। लेकिन मैं हमेशा अपने आप को सचल रखने के लिए हमेशा मैं लॉन्ग नोट्स अलंकार करती रहती थी।
0: अच्छा।
1: कि अगर कभी गाने का मौका नहीं मिला तो अलग बात है, मिला तो कम से कम शुरू कर सकते।
0: बहुत अच्छी बात है। अपने
1: ये आज भी मैं इस उम्र में आके भी मैं जो स्टूडेंट्स या जूनियर जो आर्टिस्ट है उनको कहती हूँ कि अपने को चलने के लिए आप पूछिए किसी सामने गला ठीक रखने के लिए जो सांस की तैयारी कंट्रोल वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा देर यू विल सी दैट वहां पर उम्र कोई कारण नहीं होती, लेकिन ये बात है तो सीखती रही। लेकिन फिर जब मैं इटली से घर आने लगी उस समय कोई वहां पर सिखाने वाला कोई नहीं। तो स्कूल वाले पर डी एन ए स्कूल करके स्कूल वहाँ के जो म्यूजिक टीचर थे वहाँ से मेरी फिर से शुरू हुई। मतलब फिर से जाके भोपाली दुर्गा सारंग काफी फिर से शुरू करके मतलब कोई बात नहीं।
0: अच्छा।
1: रात कभी पुराना होता नहीं, सीखना कभी पुराना नहीं। वहाँ से शुरू करके वो मैं गई विशारद तक पहुंची। विशारद में मुझे मिला नॉर्थ गुजरात से। उसके बाद फिर संगीत नाटक अकेडमी में ओंकार नाथ में मुझे प्रथम पुरस्कार भी मिला। तो ये सब होता गया। तो ये बस 79 में बड़गामी में मैंने फिर से ऑडिशन लिया था और वही चल रहा है।
0: तो जो बचपन की जो ट्रेनिंग थी, जैसे आपने अपनी संगीत यात्रा 6 साल की उम्र में ही देवकी नंदन दुबे और प्रद्योदित बैनर्जी के साथ से शुरू की है, तो बचपन में सीखी हुई पटियाला शैली की कौन सी तान आज भी आपकी गायकी का एक अभिन्न अंग बनी हुई
1: है? देखिए क्योंकि अभी उस तरह से एक ही चीज मैंने पटियाला में सीखा है जो की सभी सहमत हो गए। पटियाला घराने की गायकी में स्मूथ गायकी बहुत है। स्मूथ गायकी मतलब आप झटका लगाने वाले तान शुरू से नहीं करेंगे। झटका झटके का तान बहुत का तान से बाद में आता है। लेकिन जो एकदम बिल्कुल मतलब गाने की तरह बिल्कुल सिल्क की तरह आ जाए उस तरह की गायकी मैंने खा सकती हुआ करती थी। तो उस तरह से गाने की कोशिश तब तो करती थी और अभी उसको मेंटेन रखने की कोशिश करती है। तो एक बार भजन में बताती हूँ गायकी, वो गायकी अलग है। भजन तुलसीदास का भजन है, इसमें आपको पता चल जाएगा। जागी कृपा

0: और ये यहाँ पर गला खोल के करेंगे तो वो नहीं होगा
1: जी,
0: ठीक है। तो मुझे बिल्कुल वो दाने को हल्का सा अपनी सांस को उस तरह से ये बिल्कुल और कहीं झटका नहीं लगेगा। तो ये है पटियाले घराने की गायकी। मैंने खाली एक एग्जाम्पल दिया आपको, बाकी तो क्लासिकल में तो कोई उसका अंतर नहीं है।
1: तो बाद में लक्ष्मी प्रसाद ठाकुर उनके मार्गदर्शन में भी संगीत विशारद
0: अलंकार भी किया मैंने। अलंकार में अलंकार में मुझे गड़बड़ी तो नहीं मिला। अच्छा। क्योंकि उस तरह उस समय बहुत सांसारिक जो सबके घर में होता है उससे मुझे लगा कि मैंने इतने रागों को मैं संभाल नहीं पा रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतने राग, इतने तरह के सारंग, इतने तरह के ये दरबारी का ये तो नायकी का होगा तो दरबारी का होगा तो ये करना रहा वो करना, जो मेरे से हो पाया मैंने किया। चलिए गुरु जी की इच्छा थी इसीलिए मैंने कर लिया
1: जी।
0: और आप ये मानिए कि इतना मुझे था 25 वर्ष की आयु में मैंने विशारद किया गुरुमिल मिला और 50 साल की उम्र में मैंने 6 घंटा कविता लिखा मैंने चश्मा पहन के।
1: क्या बात, वाह।
0: और इसमें कुछ माने की बात नहीं है, ये तो
1: बिल्कुल। तो आपने कम उम्र में प्रतिष्ठित पंडित ओमकारनाथ संगीत प्रतियोगिता जीती
0: नवसारी में ओमकारनाथ कंपटीशन हुआ था, उसमें मुझे याद है बड़े बड़े लोग आए थे बाहर से। तो सुबह एक बैठक हुई, सुबह एक बैठक में 2-3 राग सुना उन्होंने, तो तभी उनको चॉइस करना था कि इनको शाम को गवाना है कि नहीं। इट वॉज मतलब क्या बोलते हैं छठना जिसको कहते हैं उस तरह से। तो उन्होंने मुझे आगे किया तो फिर शाम को मैंने बागेश्वरी गाया। टाइम बड़ा हुआ था 15 मिनट का टाइम, अब मैं उस टाइम को मैनेज कैसे करूंगी वही सोचती रही पूरे दिन, लेकिन गा लिया और मुझे प्रथम पुरस्कार मिला।
1: अच्छा।
0: ये गुजरात की बात है, ये मेरा इट्स माई अचीवमेंट इन गुजरात।
1: राग बागेश्वरी,
0: बागेश्वरी गाया था और सुबह मैंने थोड़ी गाया था, मेरा की थोड़ी गाया था सुबह सुबह। ये तो शास्त्रीय संगीत की बात है
1: जी। तो बहुत कम गायक है जो आकाशवाणी द्वारा अनुमोदित संगीतकार बन पाते हैं। तो दोहित जैसे बैले,
0: मैं देखती थी कंपोजर्स कैसे काम करते हैं
1: जी,
0: रेडियो के कंपोजर। इसमें मैं कहूंगी मेरे सबसे बड़े आदर्श है जयदेव भाई भोजक।
1: अच्छा।
0: बड़ोदरा के, किस तरह से वो कंपोजिशन करते थे। बैराम जयंती के टाइम मैंने उनको कंपोज करके देखा। अच्छा, आप जानते होंगे कि बड़ोदा इज वेरी कॉस्मोपॉलिटन। तो वहां हमारे रजिस्ट्रेशन में साउथ इंडियन आर्टिस्ट भी हैं, बंगाली भी हैं, हर तरह यूपी के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। तो उनको बुला के एक ही प्लेटफॉर्म पे बुलाया जाता है।
1: कल्चरल सेंटर के तौर पर भी वो बहुत आगे
0: बढ़ा, तब भी था, तब भी था। तो मुझे अभी याद है कि भजनों का तो बहुत कम हुआ। दयाराम की जो भाषा है ना उत्कर्ष जी, ये जानेंगे, वो कुछ ब्रज भाषा और कुछ गुजराती, ये मिक्स भाषा है।
1: अच्छा।
0: हाँ, और बहुत ही प्यारा, क्योंकि दयाराम खुद इतने बड़े संगीतज्ञ थे, उनका अभी लोग देखने लायक है, उनका जहाँ पर है उनका बहुत ही बड़ा तानपुरा है, लोग दर्शन करने जाते हैं बड़ौदा के पास से। तो जो भी हो, तो जयदेव भाई ने सिखाया, मैं देख रही थी किस तरह कह रहे थे आज सुमित्रा बहन ने आग आई सूट कर से।
1: अच्छा।
0: तो वो गले के हिसाब से बसंतला बसंता के सीता बसंत लक्ष्मण अभी मजनू राय तो ये किसकी आवाज में क्या सूट करेगा।
1: अच्छा।
0: ये मैंने तब से मुझे सोचे ये काम मुझे भी सीखना पड़ेगा। तभी तो इतनी उम्र नहीं थी, आनंद से आना जाना होता था।
1: के लिए कास्टिंग करते वैसे आप
0: वो शायद पहली बार अपने मन की बात में कह रही हूँ, वो भी आकाशवाणी से कह रही हूँ। तो ये देख देख के मैं देखती गई ये लोग कैसे करते हैं। अच्छा, इनका तो मैं रेडियो में सुनती थी, जिस दिन जैसे जिस दिन आज ना बड़े कलाकार हसमुख पाटिलिया या उनके कंपोजिशन चलते थे तो रेडियो में सुनती थी। तो इस तरह से, और ये हर एक जगह का अलग अलग अलग अलग अलग, और एक कल्चर, एक सुर, एक साधना, सब कुछ सोच अलग होती है ना म्यूजिक की, सोच सबके कंपोजिशन करने के लिए आपको सोचना पड़ता है। एक सुवर से बात उसको कहे बगैर नहीं रह पाती। जब हालांकि तब उस वक्त गुजराती का और खासकर गुजराती लिटरेचर इतना तो कुछ पता नहीं था, लेकिन जयदेव भाई ने कहा एम ए पास होती तो मुझे गजल गबड़ा होना चाहिए।
1: अच्छा।
0: तो वो भी गुजराती, रिश्वा की रचना तो मैंने एक बार भी उनसे नहीं कहा कि मेरे से नहीं होगा।
1: अच्छा।
0: और जो आप लोगों का सराज का कमरा होता है ना, तालपुरा वालपुरा, वहाँ पर हारमोनियम लेके बैठ गए, चालू शुरू करो, मैंने लिखा भी नहीं पहले।
1: अच्छा।
0: मुझे लगता था कि काम में ले सकती हूँ, बाद में लिखूंगी।
1: ओके।
0: यार उसके अलावा मेरे से नहीं बोल दूंगी, तो वो एक मुझे इच्छा हो रही गाने की।

0: चली गई थी, तो ये सफर जा रही थी, कह सकते हैं कि सफर जा रही थी।
1: तो ये जो मेघदूतम और रामचरितमानस जैसी प्रस्तुति अभी आपने की है, तो उसके बारे में थोड़ी बात करें।
0: अतिशय आनंद पूर्वक इस तरह से हमने बचपन में सुना था, यक्ष की कथा सुनी थी, फिर यक्षिणी की कथा सुनी थी, लेकिन वो इतना जीवंत हो सकता है वो कभी सुना थे, विराट इतना करुण हो सकता है वो हमारे संगीत में कितना ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकता है। देखिए तो पहला श्लोक ही है।

0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये जो बात कर रहे हैं कि भाई पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में
1: 266 मतलब वो वल्लभाचार्य के, वो गुजरात की बात है पूरी
0: जी। तो उसमें राग ताल उच्चारण लय के बीच ऐसा संतुलन कैसे आपने बनाया?
1: देखिए वो एक MP3 रिकॉर्डिंग थी, विद्यानगर में एक म्यूजिक सेंटर हुआ करता था तो उन्होंने किया था।
0: ओके
1: हाँ, तो उसमें सचमुच कहे तो वो पूरा प्रोडक्शन मैंने, पूरा म्यूजिक मैंने किया था उसका।
0: अच्छा, इसकी पूछा
1: वो बहुत दिनों से अभी स्मृति में नहीं है, लेकिन वो बहुत एक आनंद पूर्वक काम था। अच्छा, कृष्ण के जीवन का बचपन से लेकर देखिए कुछ तो गीत गोविंद ऐसा है, कुछ नहीं भी है। देखिए एक बात है, मेरे से सहमत होंगे म्यूजिशियन लोग जो बैठे हुए यहाँ पर, कि खाली गाना नहीं है, पढ़ना भी बहुत जरूरी है
0: जी। इसलिए आपको मैंने उच्चारण के बारे में भी पूछा,
1: पढ़ना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए मेरी माँ एक बात कहा करती थी, इंग्लिश बंगला मिला के बात नहीं करना है। बहुत लोग यहाँ पर गुजरात में है ऐसा, गुजराती के साथ इंग्लिश मिक्स करके बोलते हैं,
0: इंग्लिश
1: बोलते इतने ज्यादा दूषित लगता है सुन लोग, अपभ्रंश हो जाते हैं ना, तो वो करना नहीं। बंगला बोलो तो बंगला, हिंदी बोलो तो बोलो, इंग्लिश बोलो तो बोलो, तो वो शायद संस्कार रह गया था, जिसकी वजह से मैं जब गुजरात में आई तो गुजराती सीखने की प्रेरणा भी जो जिन लोगों से मुझे मिली, और वो ज्यादातर मुझे म्यूजिकल सर्कल से ही प्राप्त हुआ।
0: ये जो अगर यूट्यूब प्रस्तुति है नाम खुशबू, तो उसके बारे में
1: ये वैसे तो आप खोल के भी सुन सकते हैं यूट्यूब में, तो वो नाम खुशबू तो है, जन्माष्टमी महोत्सव है, कुछ यूं ही छोड़ी गजल वो मैंने ऐसे किया था, जैसे वो हारमोनियम लेके कोई बैठ गया, कोई उस तरह से ठीक है। दैट वॉज अ वेरी ऑर्गेनाइज प्रोग्राम। देखिए ये जो मैं ऐसे सुना रही हूँ, स्पॉन्टेनिटी जो है, तो वो एक बात अलग है, और जब सारा म्यूजिक कंपोज किया, सारा इंटरल्यूड प्रील्यूड और इतनी सारी चीजें जब बनती है, तो वो म्यूजिक वो अलग होता है
0: जी।
1: ये इस चीज को मैं मानती हूँ, डिजिटल स्टेडियम से निकल के आया वो चीज अच्छी होती है।
0: बिल्कुल। तो मैडम अंत में आपको पूछना चाहूंगा कि जो शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत के पोषण में आप इसका भविष्य कैसे देखते हैं?
1: मुझे तो ऐसा ही लगता है जिस तरह मैंने सीखा है उसी तरह सभी सीखे, जो संगीत सीखते हैं वो लोग सीखे
0: जी,
1: जिस तरह मैंने सीखा। और मैं अपनी अभी जो मेरे पास जिनके 5 होंगे ऐसे बच्चे जो हैं, उनको मैं कहती हूँ ये मैं अलैया बिलावल का कर, ये तो अकाबरे बटोरिया दे रही हूँ ना बेटा, ये मैं जब 10 साल की तब थी तब सीखा, तुम भी सीखो ठीक से और मेरे सामने इसका नोटेशन करो।
0: तो आप इतने स्ट्रिक्ट है?
1: हाँ थोड़ा हूँ, लेकिन किसी के साथ किसी को डांटती भी नहीं।

0: लेकिन करवा के छोड़ती हूँ
1: बिल्कुल।
2: आज सर संवाद कार्यक्रम में हमारे साथ है श्रीमती सुमित्रा रॉय चौधरी जी। तो मैडम आज के कार्यक्रम के अंत में आप हमारे श्रोताओं के लिए एक गीत प्रस्तुत करेंगे तो अच्छा लगेगा।
0: बिल्कुल गाने के लिए तैयार रहती हूँ, इसके लिए कई बार लोग हंसते भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि संगीत ने मुझे, जिन लोगों ने मुझे आज 30 साल से 40 साल से देखा है वो बहुत लोग जानते हैं कि शायद म्यूजिक ही कि विच इज कीपिंग मी अलाइव। और हमेशा जो यहाँ के जो पारंपरिक भजन सुनती रही हूँ, और यहाँ का जो मेरी बेटी कहती है कि गुजरात की रेत भी तो गाती है इतना ज्यादा कि वो बड़े यहाँ हुए तो उनका बहुत प्रेम यहाँ से।
2: हवा में जैसे बोलते हैं ना बिजनेस है, वैसा संगीत भी है,
0: है ना? मानना चाहिए इस चीज को, जानना चाहिए इस चीज़, मानना और जानना दोनों चीज है ना। तो इसीलिए मैं छोटे से जब इतना आपने अगर गजल भी गाया, थोड़ा सा ये तुलसीदास को भी गाया, तो मुझे कुछ ना कुछ गुजराती का तो होना ही चाहिए, जो कि पारंपरिक चीज है ये। काफी राग में बहुत जानी पहचानी बात है,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी योगी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा के मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमियां आने के बाद अब पुनः मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। अनियमितताओं की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कमियों को दूर किया जाएगा और उचित समाधान निकाले जाएंगे।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में

0: पूर्वोत्तर का तीसरा राज्य बन गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धरमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। यह बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि से 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रूपये की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। ईद उल अजहा का पर्व आज देशभर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज नहीं अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu has urged the police in the country to become more citizen-centric and sensitive while dealing with people, especially women, the poor and children. President Murmu was addressing the gathering after conferring the prestigious President's Police Colour on the Sikkim police during Alankaran parade held in Gangtok.
2: महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में तथ्य बनाना होगा।
1: Meanwhile, Sikkim has been officially declared a fully literate state under the ULLAS, Understanding of Lifelong Learning for All in Society initiative. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today said that re-evaluation process will now begin after certain issues have come to light regarding the CBSE Class 12th examination evaluation process. Speaking to media after the meeting with CBSE officials in New Delhi, Mr. Pradhan said officials will ensure that no student query is left unresolved and accountability will be ensured at all levels. Taking responsibility for the discrepancies, the Education Minister said the issues will be rectified and appropriate solutions will be worked out.
3: Children should receive transparent information about their marks. through scan copies, the answer sheets, should reach them transparently. This is a provision under the OSM system. For the first time in the country, CBSE has implemented this system. Some discrepancies have come to notice in it. I take responsibility for this and it will be corrected properly. We will make sure that no genuine query raised by any student remains unanswered.
1: The National Testing Agency, NTA, has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test Undergraduate CUET UG 2026 examinations. As per the NTA, examinations will now be conducted on the 31st of this month and the 6th and 7th of next month. The examination, which was scheduled for today, was rescheduled due to Eid al-Adha. NTA said admit cards for candidates appearing for the test on Sunday have been released, and they can be downloaded from the official website of NTA, cuet.nta.nic.in. The admit card for the remaining candidates, whose examination is being scheduled on the 6th and 7th of next month, will be released soon. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah will submit his resignation to the Governor this afternoon. State Parliamentary Affairs Minister H.K. Patil informed us while leaving the breakfast meeting called by Siddaramaiah. He said Siddaramaiah has been told by the Congress High Command to resign and accordingly he will submit his resignation at Lok Bhavan. He further informed that D.K. Shivakumar will take over as the Chief Minister. Bharatiya Janata Party BJP leader from Punjab, Kewal Singh Dhillon, has been appointed as the state president of the party's Punjab unit today. He has been given the charge of Punjab unit by the party's national president, Nitin Naveen. Iran's Revolutionary Guards today said they targeted a U.S. base this morning in retaliation to American strikes near Bandar Abbas Airport. Iran did not disclose the location of the base that was attacked, but Kuwait, a U.S. ally, said earlier it was responding to hostile missile and drone attacks. Today is the birth anniversary of great nationalist and freedom fighter Vinayak Damodar Savarkar, popularly called Veer Savarkar. Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah remembered the great leader on the occasion. The festival of sacrifice, Eid al-Adha, or Bakrid, is being celebrated with religious fervor and gaiety in various parts of the country today. People offered prayers in Eidgahs and mosques this morning. Later, they exchanged Eid greetings. President Rapati Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, and Prime Minister Narendra Modi greeted the people on the occasion. And with that, we end this news bulletin.
3: আচ্ছা, এটা শুনানো আহমেদাবাদ বড়োদরা রাজকোট এবং বুথ কেন্দ্রে এক বাজনে 10 মিনিট থেকে রয়েছে প্রস্তুচ্ছে সুগম সঙ্গীত নো কার্যক্রম নৈমিষ জানি নে সাবলি রচনা শিবরাজ অলক

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उपमुख्यमंत्री वी के शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलदम विमंत के पास अमरीका ईरान के हमले से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अज़हा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पूरा मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन टॉपिक के माध्यम से उनके आंसर से उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया। उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ गई, उसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको से ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की अनआंसर्ड क्वेरी को असंवाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियों और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अज़हा के कारण तिथियां पुनः निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।

0: की प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप टेक जैसी नई चुनौतियाँ सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दबदबा बनाना होगा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन आईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को फिर से सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वह मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
2: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधीन्द्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नेताजी वाजपेयी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवगौड़ को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमरीका और ईरान ने हॉर्मुज जलबंद मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं। इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमले में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और हॉर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेकिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिम्मेज सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मेयर अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के 2 व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कृष्णा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @LRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
4: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहाँ 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बकरीद में ईदगाह तक पहुँचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
5: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय विविध परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज दो सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से
1: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि दरवाजा का त्यौहार वहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
6: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्यौहार मनाया तथा जरूरतमंदों ने भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराधा कुमारसिंहे ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। आकाशवाणी समाचार कोलंबो।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तेदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बालासाहेब निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था। इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एन टी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एन टी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपूरिया तथा तैशा कास्ट्रो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21 बारह से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एम से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कार्यकाल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने सदन से कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जागर विरुद्ध के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्सव के साथ मनाया जा रहा है और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आज लोकभवन में राज्यपाल के सचिव को औपचारिक इस्तीफा सौंप दिया है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिद्धरामैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि वे नियमित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि उनकी सरकार को विधानसभा में 136 से अधिक विधायकों के समर्थन से पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम

करनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड पैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियाँ सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से

0: होगा।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने देश से हर अवैध अप्रवासी की पहचान करके उसे निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता

बघेल सहायक की जयंती के अवसर पर श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान समर्पण और अमूल्य योगदान को याद किया। श्री शाह 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान मुद्रीकरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रस्तावित खंडों की अस्थायी सूची को अंतिम रूप दे दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि चिन्हित राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की कुल लंबाई 1659 किलोमीटर से अधिक है। यह हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र सहित 9 राज्यों में फैले हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू किए गए नए ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रहे पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CET UG 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर में वहां के रक्षा सचिव जोसेफ लियांग के साथ 19वीं रक्षा नीति वार्ता की अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वार्ता में

की भी व्यापक चर्चा हुई। भारत कोरिया व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के उन्नयन वार्ता का 12वां दौर नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ। वार्ता की सह अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव कपिल चौधरी और कोरिया गणराज्य के व्यापार उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय के व्यापार समझौता नीति महानिदेशक पार्क जेन ओह ने की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने उन्नयन वार्ता में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की गयी। ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात।

0: प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: लव आजकल, आप मोहित चौहान शर्मा।

0: नमस्ते, ये आकाशवाणी है। हाँ, तो अनिल वंजानी के बदल सिंधी में खबरों सब का अवल खास खास खबरों। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अज लोकभवन में गवर्नर के सेक्रेटरियट के इस्तीफा सौंपे दिनों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम पुलिस के अज नामियारे राष्ट्रपति पुलिस झंडे से नवाजो। मरकजी गृह मंत्री अमित शाह मुल्क के हर गैर कानूनी नमूने परदेस व आयरलैंड की सुनप कर उनके निर्वासी करण की सरकार की कोलबद्धता दोहराई है। भारत कोरिया वसीय माली हिस्सेदारी करार के अपग्रेड गुफ्तगु जो मारो दौर नई दिल्ली में मुकम्मल थो। कुर्बानी जो त्यौहार ईद उल अजहा समूरे मुल्क में धार्मिक उत्साह से मनाया पो वे। हाँ, खबरों तफसीलवार बदंदा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अज लोकभवन में गवर्नर के सेक्रेटरी के इस्तीफा सौंपे दिनों। श्री सिद्धारमैया उन गवर्नर के अर्ज किया है तो नामजद थियल मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के अहदे जो वागू संभालने लाए नींद दे छो जो उनकी सरकार के विधानसभा में 136 का भी एमएलएस के टेके से मुकम्मल गणी हासिल की है। नामजद मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में एक है और मौजूदा वक्त में उप मुख्यमंत्री है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम पुलिस के अज नामियारे राष्ट्रपति पुलिस झंडे से नवाजो। अलंकरण परेड जो आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में कयो वियो। इन इनाम के हासिल करण वारो सिक्किम मुल्क जो 15 राज्य और उत्तर ओभर जो 3 राज्य बनजी वियो आहे। समारोह के खिताब कंदे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुलिस अमले की ताकत का वधिक नागरिक मरकूज बनजण जो अर्ज कयो। उन पुलिस अमले के खास तौर महिलाओं गरीबन संवेदनशील रहने जो अर्ज कयो।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम ऑनलाइन फ्रॉड हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियाँ सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में तथ्य बनाना होगा।
0: मरकजी गृह मंत्री अमित शाह मुल्क के हर गैर कानूनी नमूने प्रदेश में आयरलैंड की सुनवाई पकड़े उनके निर्वासी करण की सरकार की मजबूत कालबद्धता दोहराई है। उन्होंने गांधीनगर लोकसभा खिते में 340 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं जो मुहूर्त कयो और एक आम सभा में यह गाल चई।
2: खुशफेकिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमीशन कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों की भी चिंता करेगी, उसके उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।

0: ऑफ लिविंग फाउंडेशन जे 45 साल मुकम्मल थियण जे मौके ते मुंतज़िम आलमी समारोह में शामिल थींदो। हू कर्नाटक जे दावणगेरे में आयल यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जे प्लेटिनम जुबली समारोह में भी शामिल थींदो। भारत कोरिया वसीअ माली हिसेदारी करार जे अपग्रेड गुफ्तगु जो 12वां दौर नई दिल्ली में मुकम्मल थियो। गुफ्तगु जी गडियल सदारत वणज विभाग जे जॉइंट सेक्रेटरी कपिल चौधरी ए कोरिया गणराज्य जे वापार उद्योग ए शक्ति वजरा जे वापार करार नीति डायरेक्टर जनरल कई। खबरों आकाशवाणी का बुधी रहा आयो। ये खबरों असि यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गुजरात पर बुधी सकोता। खबरों की तफसील लाए तभी असि वेबसाइट newsonair.gov.in के फॉलो कर सको था। कुर्बानी जो त्योहार ईद उल अज़हा समूरे मुल्क में धार्मिक उत्साह से मल्हायो पियो वञे। इनके बकरी ईद भी चयो वेंदो आहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईद उल अज़हा ते मुल्कवासियुनि खे मणी मुबारकूं ॾिनियूं आहिनि। बचाव सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह अॼु सिंगापुर में हुतां जे बचाव सेक्रेटरी जोसेफ लियोंग सां गॾु सोरी बचाव नीति ॻाल्हि जी गॾियल सदारत कई। बचाव वज़रात सोशल मीडिया पोस्ट में चयो त हिन ॻाल्हि ॿोलि भारत ऐं सिंगापुर जे विच में मज़बूत आइनी बचाव भाईवारीअ जी ख़ातिरी कई आहे। अमरीका ऐं ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट जे वेझो हिक ॿिए मथां हमला कया आहिनि। इन सां मौजूदा जंगबंदी वधीक कमज़ोर थी वई आहे। हिकु रिपोर्ट।
1: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और हॉर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: तेलंगाना मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चाहे तो CBSE जी दर्जे बारे जे इंटरव्यू में कथाकारों ने कुछ खामी रचना खपे हाने वाली प्रक्रिया शुरू कई वेंदी। नई दिल्ली में

0: ਕਰਨ ਸਾਂ ਬੈਠਕ ਅਕਲਪੋਏ ਅਖਬਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਂ ਗਾਲਬੋਲ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਹਤ ਹੈ।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसओ की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, उसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की अनआंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: ओभरी मध्य प्रदेश और विदर्भ में जबरदस्त लूज और रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना ए उत्तर प्रदेश में भी अज लू जा इम्कान है। इन बिन कंट्रोल डीओ के दौरान आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी ए कराईकल में मौसम गर्म ए गिमल रहो। उड़ीसा में अज रात मौसम गर्म रहने जा आसार आन। भारत टीम सुबह का 6 जून तक जापान के टाकामी गांव में शुरू थे वाले अंडर 18 एशिया कप हॉकी 2026 में खेलने के लिए मुकम्मल नमूने तैयार है। पुरुषों की कैटेगरी में भारत के पूल ए में रखा गया है। पूल ए में मेजबान जापान, कोरिया, चीनी ताइपे ए कजाकिस्तान जो टीमें शामिल हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत जो देखा हो शानदार रहे हो। लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी ए सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एंड मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिल ए तनिषा कास्टो क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। हाँ, खास खास खबरों एक दफा वरी बुधंदा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज लोकभवन में गवर्नर के सेक्रेटरी के पांजो इस्तीफा सौंपे दिनो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम पुलिस के अजय मैनर राष्ट्रपति पुलिस झंडे से नवाजियो। मरकजी गृह मंत्री अमित शाह मुल्क के हर गैर कानूनी नमूने परदेस आयलैंड की सुनवाई पकड़े, उनके निर्वासी करण की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत कोरिया वसी माली हिस्सेदारी करार के अपग्रेड गुफ्तगु जो बारहों दौर नई दिल्ली में मुकम्मल थो। कुर्बानी जो त्योहार ईद उल अजहा समूरे मुल्क में धार्मिक उत्साह से मल्हायो पियो वे। खबरों के सिलसिले में पूरा थो मुख्य इजाजत। नमस्ते।

0: वजह से आप दोनों को यहाँ पर इन्वाइट कर पाए हैं और आप दोनों को हम ऑल द बेस्ट कहना चाहते हैं. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू रिलीज. थैंक यू सो मच मैम.
1: थैंक यू.

0: gratis fue el peor negativo que el que hay en algún rato para mi mamá también de hecho maratí se gurna maratí gito ne en el que te sambra mamá o te tú pero también que das papel así gita rama en calidad y cao para el tato to maratí ma तो ये पर सुधीर करके जी हाँ तो ये गीतो घरना रिपीट मा એટલે જ્યારે પણ એ વાગે તો એને એક વેટ કરતા ઘરે કે કે રાખશે અને પછી એ રીતે રેડિયો ઓન કરીને ઘરે બધા એની ત્યાં બેસી રહે તો મારી એ યાદ છે અને સવારમાં પણ આવે કે સન્ડે ના મરાઠી નો પ્રોગ્રામ આવે છે ઇવન ગુજરાતી પણ એને સાંભળીએ છીએ ઓફકોર્સ તો એવો એક કનેક્શન છે આકાશવાણી સાથે
1: बहुत बहुत ही अच्छा लगा आप दोनों से बात करके कि आप लोगों का आकाशवाणी के साथ इतना जुड़ाव है और आपने अपनी फिल्म में भी एक सीन भी डाला है और मैं आपको यह बता दूं कि कृषि आधारित कार्यक्रम है वो आज भी होता है हर स्टेशन से होता है हर दिन होता है
0: जी, जी,
1: तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मुलाकात करके और आप कुछ अगर संदेश देना चाहें आकाशवाणी के माध्यम से तो जरूर कहें
2: मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को पहले तो नमस्कार करता हूँ धन्यवाद देता हूँ क्या तुम्हें सुन रहे हैं और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ड्रॉप आउट करके एक मेरे को सिनेमाघर में रिलीज हो रही आपने जरूर देखिए मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप देख के जैसे अंदर गए होगे वैसे नहीं वापस आओगे और आपने जरूर बताया फीडबैक आपको कैसी लगी फिल्म
0: जी मैं भी सभी से यही अपील करना चाहूंगा कि आप लोगों को पसंद आएगी आप लोगों को अगर क्लैरिटी चाहिए जीवन में लाइफ में तो आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और इसी के साथ बस यही संदेश है कि कभी भी क्विट मत करिए
1: बिल्कुल सही कहा आपने वो मुझे एक कविता की पंक्तियां याद आ रही है कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता एक पत्थर तो तबीयत से उछाल रहा है दुष्यंत कुमार जी की कविता आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद आप लोग यहाँ पर आए हैं आपकी पूरी टीम यहाँ पर आई है ऑल द वेरी बेस्ट और मैं चाहूंगी कि जो आपकी कामना रही है वो भी पूरी हो थैंक यू
2: थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस थैंक यू
0: थैंक यू

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल को नियमित मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वह राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। 2023 में राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद श्री सिद्धारमैया दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत में श्री डी के शिव कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठी की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।

0: मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेलथंगडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस यांचा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श एंड सहमति और असहमति के वातावरण में फलप्रद होता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भरसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लांग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता में भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा कास्टो की जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का अगला मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी भूज प्रस्तुत छे मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस ने प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस कलर एनायत कर्यो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ए नवी दिल्ली में 51वीं प्रगति की बैठक की अध्यक्षता करी। आश्रे 30,000 करोड़ ना 7 मुख्य माथागत प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में विकास कार्यों लोकार्पण कर आती कच्छ व्यूहात्मक हरामीनाला विस्तार की मुलाकात लेते। देश दुनिया की साथ कच्छ जिले में ईद उल अजहा शांतिपूर्ण माहौल में थी रही है उजवनी। अमदावाद में इबोला शंकास्पद केस नेगेटिव आता राहत, छता केन्द्र की गाइडलाइन मुजब युगान कच्छ आ 3 मुसाफरो होम आइसोलेशन में रखाया। हवामान विभाग की आगाही अनुसार आगामी 30 मे थी 2 जून दरमियान गुजरात में भारे पवन और गाजवीज साथ प्री मॉनसून वरसादी माहौल जमशे। कच्छ में शनिवार रविवार के विस्तारों में झापटा पड़वा संभावना। गांधीधाम में रोटरी सर्कल खाते पूर्व कच्छ ट्राफिक पोलिस और दाता संस्थाओं द्वारा 251 टू व्हीलर चालकों ने मफत हेलमेट आप सुरक्षा कवच पूरू पड़वा। भूज तालुका ग्राम्य विस्तारों में योग्य मवजत और सानुकूल वातावरण ने कारण आ वर्षे दाड़ो बम्पर पाक थी खेड में आशा। अंजार नगरपालिकाए प्रतिबंधित प्लास्टिक मुक्त झूंबेश अंतर्गत जत्थाबंद वेपारी ने त्या दरोड़ा पाड़ी 1,200 किलो प्लास्टिक नो जत्थो जप्त कर्यो। गुजरात में असहायता और उकड़ाट वे हवामान विभाग ने राज्य में प्री मॉनसून एक्टिविटी शुरू थी सत्तावर संभावना व्यक्त करी। अंजार एपीएमसी में केसर केरी की एंट्री रोजना 30-40,000 बॉक्स की थी रही है आवक। દીકરામાં વૈદિક ચિકિત્સા અનુસંધાન અને રિસર્ચ સેન્ટરનું વર્ષાંતે કરાશે લોકાર્પણ. મુખ્ય સમાચાર પૂરા થયા.
2: છ મહિનાથી છ

हमारी जो है रोजनी एक एक एक प्लास्टिक में बैग आते जाए एंड 30 प्लास्टिक में बैग थे छे ओमन जरे और 12 महीने और आ अगर तुम्हारी कंटिन्यू रहे तो 30 गुना 12 करो तो कितना थे 360 360 प्लास्टिक में थैलियों एक एक व्यक्ति ने वपराश में थई रही है આજે આખી ગણતરી છે કે એક જ પ્લાસ્ટિકની થેલી માટે આપણે ગણતરી કરી છે. હવે ધારો કે આ એક જ વ્યક્તિને આ એક જ પ્લાસ્ટિકની બેગ જો વર્ષે 360 પ્લાસ્ટિકની બેગ થઈ શકતી હોય તો તમે જે

0: उसके तारे और सितारे की भी चिंता करेंगे और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेंगे।
1: सुशाह एक सप्ताह में सरहद सुरक्षा दल BSF ने 600 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध करवाया, बदल पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रशंसा करी। आज वीर सावरकर जी जन्म जयंती निमित्त सुशाह मातृभूमि प्रति तथा सर्वोच्च बलिदान समर्पण में अमूल्य योगदान की याद करी। त्यार बाद अहमदाबाद में नवनिर्मित उम्मीदवार छात्रालय परिसर का लोकार्पण प्रसंगे सुशाह कहूं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा में अभूतपूर्व परिवर्तन जोड़ है। देश एक दायका में नक्सलवाद और आतंकवाद नाबूद कर श्री शाह भारपूर्वक जानू। त्यारबाद श्री शाह आगामी ओलंपिक राष्ट्रमंडल और विश्व पुलिस तथा अग्निशमन मदतों मालकीय सुविधाओं की तैयारी की समीक्षा करवा अतिथि गृह में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर। पश्चिम बंगाल सरकार बंगाल में गैरकायदे घुसणखोरों से मुक्त करवाने शक्य तमाम प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री सुभेन्द्र अधिकारी पूर्वभार संभालकर घुसणखोरों ने अंकुश में लागवा शोधो दूर करो देश की जान करने नीति लागू करी है। आ योजना हेठ घुसणखोरों ने अटकायत करवा मांग रही है और तमाम कायदाकीय औपचारिकताओं पूर्ण कर बांग्लादेश परत मोकलाई रहा है। कायदाकीय औपचारिकता पूर्ण न थाय त्या सुधी घुसणखोरों ने अटकायत केन्द्र में रखाई है। उत्तर 24 परगना स्वरूपनगर में आज हकीमपुर चेकपोस्ट पर लगभग 50 बांग्लादेशी घुसणखोरों घरे परत जवा

केस पुलिस बले अमृत रोड़ा पकड़ पाड़ो पिनाची खूंटी आसपास जिल्ला जबरदस्ती खंडणी वसूली और गुनाहित प्रवृत्ति में कथित रीते सामेल हतो। पुलिस अन्य उग्रवादियों ने संगठन ने नेटवर्क अंगे माहिती एकत्रित करवा माटे अमृत होरड़ी पूछपरछ कर रही है। भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। चिराग शेट्टी और सातवीं की साईराज रेड्डी रेड्डी की पुरुषों की डबल्स जोड़ी तथा ध्रुव कपिला और तनिषा कास्टो की मिश्र डबल्स जोड़ी पर क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। पीवी सिंधु का आगामी मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग साने थे। अंत में मुख्य समाचार फरी एक बार। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह देश में गैरकायदे रहता दरेक लोगों ने ओखवा तेमने देश निकाल करवा सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता नो पुनरुच्चार कर्यो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहूं देश में अनाज नो पूरतो जत्थो उपलब्ध। तेलंगाना में काजीपेट रेलवे निर्माण में आगामी पांच वर्ष में 200 इंटरसिटी ट्रेन नु निर्माण कराशे। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पद पर थी राजीनामा आप्यू। प्रसिद्ध कवि और उर्दू साहित्यकार बशीर बद्रलो 91 वर्ष की वय अवसान। रांची में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया ने मुख्य सूत्रधार अमृत होरड़ी धरपकड़। आकाशवाणी का थी समाचार पूरा था। हम पशी आप आर्थिक साढ़े 7 वाले 10 मिनट प्रादेशिक समाचार सांभ सकशो।

सेवा मेल कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं सुरेंद्र गुलाटी का लिखा नाटक यादों की परछाइयां। आइए आज सुनते हैं इस नाटक का चौथा और अंतिम भाग। निर्देशक हैं दीनानाथ।

इस बात से कि बाबू घर में नहीं थे। नीना ये बात पहले से ही जानती थी, तो बस नीना जो चाहती थी उसने पा लिया। हम लोग वैसे ही मिलते रहे, लेकिन बाबू से कभी भी मुलाकात ना हो सकी। फिर नीना ने शादी का जिक्र भी छोड़ दिया। मुझे भी लगा मैं उसके लिए कोई खास कशिश नहीं रह गया हूँ।

0: पहले ऐसे उसके बाद से मुझे सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ। और अगर कहीं कमी रह जाती है तो आंखें बंद करके तुम्हें याद कर लेते हैं। तुम मेरी बात पर यकीन नहीं है? छोड़। और सुनाओ
1: कैसी
0: नजारी है? कुछ समझ में नहीं आ रहा।

0: दूसरे लफ्जों में जिंदगी भर में दूसरे को धोखा देते रहे।
1: मैं इसे अरेंजमेंट कहती हूँ। इस समय में जिंदा रहने के लिए एक सूझबूझ के अरेंजमेंट की जरूरत भावनाओं से ज्यादा है। जिस रफ्तार से हम आगे ही आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ रुक कर पीछे देखने वाला इंसान पिछड़ जाएगा। दूसरा को हर मोमेंट मर चुका है, खत्म हो चुका है। देखिए जहाँ खड़े हो उसी को स्टार्ट मारकर नई दौड़ शुरू कर। कम से कम मैंने यही किया है और मेरा ख्याल है आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन।
0: लेकिन केवी
1: बिल्कुल परफेक्ट लड़की दुनिया में कोई है? केवी में बहुत कुछ है। उसके बाद की क्या पोजीशन है?
0: मुझे उससे क्या लेना देना?
1: केवी उनकी एक लौटी बच्ची है।
0: लेकिन मुझे उसके रुपए से कोई मतलब नहीं।
1: मैं सही, वो तुमको बेहद

0: Stevie.
1: Thanks for coming.
0: Come on, Stevie. Good night.
1: तुम क्या करोगे? बस कदर ही कर लो, हमें लोग प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारी तरह के भूतों का खतरा होता है ना, तो सोना सोना लगता है। मुझे तो ऐसा जाता

0: कोशिश करूंगा।
1: आई होप मैं लेकिन कोशिश करूंगा, जो होना ही चाहिए।
0: मैं कल सुबह तुम्हें खबर कर दूंगा,
1: लेकिन
0: हमारे ऑफिस अभी भी कई मामलों में बहुत ठेका है, उसे टाइट करो विक्रम,
1: खूब टाइट करो।
0: यस सर,
1: पुलिस उस तरफ फायर बिल्कुल बस नहीं विक्रम,
0: तुम्हें उसे क्या करते हो, उस टाइम की चीज नहीं
1: है।
0: उसकी चीज
1: में उसे क्या होगा,
0: मेरी गलती पुरानी हो जाएगी।
1: अगर इस आदमी का सोचो तो तुम समझोगे कि बात की कीमत भारत की टीम से ज्यादा नहीं आ रही है सर।
0: हमने एक बार पूरा डिपार्टमेंट खोला था,
1: जिसका काम सिर्फ यही था कि इस आदमी बताए और देखे।

उत्पादों की परछाइयां। इस नाटक का अभी आपने चौथा और अंतिम भाग सुना। लेखक सुरेंद्र गुलाटी और निर्देशक दीनानाथ। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

चितना कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं प्रीति शर्मा के साथ। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम का पहला गाना मिला है फिल्म केदारनाथ से। इसे गाया है अरिजीत सिंह ने, गीत अमिताभ भट्टाचार्य का, संगीत अमित त्रिवेदी का।

0: अमर गीतों के रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आ गई।
0: तो सुनने में भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ

0: वंचित लोक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई,
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग। हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: आप सुनते हैं विजेंद्र वर्मा की आवाज में टेबल नंबर 21 फिल्म का गाना, गीत असीम अहमद अब्बासी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प, और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफिक चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारण और उपायों की चिंता करेगी, और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई दी गई। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमान के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गयी। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहाँ हाईकमान के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधीर, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक बगराय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक बगराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक सिन्हा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री बगराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरल के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वार्षिक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्टागंज के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जब मिल जाएगा सबको अपना नक्शा लिख के तैयार तो पक्की हो जाएगी हमारे जी और टीवी की हार।
1: इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरान होगी हमारे देश में

0: आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चिन्हित की जा रही।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या fcat.edcil.co.in पर।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध है कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को अपना मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 करोड़ को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिलाकर 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर है या सेल्फ स्वामित्व में है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन अपहरण के बाद के प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप बदलने पर चर्चा हुई। कोयला खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद विचार विमर्श आम सहमति असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों के कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: Escritor y Carlos.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यानेव यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक है। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्हें दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती है दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजयी अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुँचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की यह आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हो, दिन रात जलता रहता हो, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाये रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वही कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
4: कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत में लगा हुआ पूरी भारत और दक्षिण परिभाग के क्षेत्र में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। हिंदुस्तान एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि की को सीधे कैटेगरी का हो सकता है और नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूरी भारत उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और ग्रेंट कंडीशन से राहत मिलने की पूर्ण जारी किया गया।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों का 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग ने आज सचिन कलप्पा शेरोल ने जॉर्डन के समी अहमद और उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद किरण मिन्हान ने श्योक मेहिन को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष पुल साल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में 3 खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने के सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य के सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि देश के कोटि कोटि जनों ने भी मुझे आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखी। आपके इस आशीर्वाद की शक्ति से मैं दिन रात देशवासियों की सेवा में जुटा रहा। इन वर्षों में देश ने एक फैसले लिए जो अकल्पनीय थे अभूतपूर्व है।

आज देश निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा। आज हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। देश की तरक्की के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हम भारत में ही बनाए, आज के समय की मांग है। भारत आज तेज गति से मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। देश की जरूरत के सामान का निर्माण हो या फिर दुनिया के अलग अलग देशों में हमारे देश से बनी हुई चीजों का एक्सपोर्ट, ये सारा लगातार बढ़ रहा है। आज हम स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियां, खिलौने, सेना के अस्त्र शस्त्र, दवाएं, ऐसा बहुत सारा सामान दुनिया के देशों में निर्यात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज भारत रेल, मेट्रो और इसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजी खुद बनाता भी है और दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है। भारत

सभी दोस्तों को यूनुस खान का नमस्कार। आज उस फिल्मकार की कहानी जिसकी फिल्में इस शेर के साथ शुरू होती है। बहुत बरस पहले की बात है, गुजरात में बड़ौदा के पास एक गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़का रहता था। उस लड़के को फिल्मों का ऐसा शौक था कि बड़ौदा से निकलने वाली किसी ट्रेन में सवार हो जाता और आसपास के गांव या कस्बे में पहुंच जाता, लाइन से एक दो फिल्में देखता और लौटती ट्रेन से चुपचाप वापस आ जाता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। घर वाले ये सोचते हैं कि ये लड़का जहाँ वहाँ भटकता रहता है, जाने किन किन के साथ खेलता रहता है। ऐसे ही एक दिन वो ट्रेन में बैठा मुंबई की तरफ जाने के लिए। इरादा ये था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। पिताजी को पता चल गया। पिताजी ने जमकर कुटुंबस की और वापस ले आए। आज के फनकार कार्यक्रम में आज रोचक दास्तान

सितंबर 1906 को बड़ौदा के पास सरार गांव में हुआ था। बहुत सामान्य सा परिवार था, छोटा मोटा काम था, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, जिंदगी खुशनुमा थी। जैसा कि हमने आपको बताया, महबूब खान की बचपन की जिंदगी में ट्रेनें चला करती थी और उन ट्रेनों पर सवार होकर वो आसपास जाते, फिल्में देखते और वापस लौट आते। जहन में बस ये चलता रहता कि किसी तरह से वो खुद को पर्दे पर देख पाए, शौक अभिनय करने का था। तो भाई ये सिलसिला जारी रहा, पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए कायदे से पढ़ाई लिखाई हो न सकी और फिर हुआ यूं कि आसपास के शहरों में फिल्में देखना होता रहा। समय बीतता गया, हुआ यूं कि महबूब खान की दोस्ती एक रेलवे गार्ड से हो गई थी और उस रेलवे गार्ड ने उनको पूरी तरह से यकीन दिला लिया कि उनके भीतर फिल्मी पर्दे पर अभिनेता बनने के गुण है और उन्हें भाग जाना चाहिए मुंबई। हुआ यही, 16 वर्ष की उम्र में महबूब खान मुंबई भाग आए और सिनेमा में अपना नसीब आजमाने लगे। कॉन्स्टेबल पिता को पता चल गया, वो सीधे मुंबई आए, अपने बेटे को ढूंढा, उसका टाइम पकड़ा और उसको वापस बड़ौदा ले गए। वहाँ जबरदस्ती महबूब खान की शादी कर दी गई, ये सोचकर कि वो बस यहाँ बंध जाएंगे और सिनेमा के अपने जुनून को जहन से निकालकर फेंक देंगे। बहुत जल्दी महबूब खान एक बेटे के पिता भी बन गए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं आनी थी सो नहीं आई और आखिरकार महबूब खान ट्रेन में सवार होकर

में रबर फैन उस जमाने के वीटी स्टेशन के पास ज्योति स्टूडियोज के बाहर खड़े रहते और इस फिराक में रहते कि किसी तरह से स्टूडियो में घुसने का मौका मिल जाए, बाकी का काम वो निपट लेंगे और किसी तरह से अभिनेता तो बन ही जाएंगे। लेकिन ये हो नहीं रहा था। दिन पर दिन बीत रहे थे, महबूब खान रातें प्लेटफॉर्म पर सोते हुए गुजारते, तरह तरह की परेशानियां होती, वो हौसला नहीं हारते, हर सुबह ज्योति स्टूडियोज के सामने खड़े हो जाते। एक दिन डैड सचमुच इम्प्रेस हो गया और उसने महबूब खान की मुलाकात करवाई आर्देशिर ईरानी से, जो उन दिनों भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ से महबूब खान की गाड़ी चल पड़ी क्योंकि आर्देशिर ईरानी ने उन्हें बतौर एक्स्ट्रा काम दिया। सन 1927 में ये फिल्म थी अली बाबा और 40 चोर। इसके बाद वो क्राउड का हिस्सा बनते रहे, फिर जूनियर आर्टिस्ट बने, फिर सपोर्टिंग रोल्स मिलते रहे और फिर ऐसा मौका आया जब भारत की पहली बोलती फिल्म के हीरो के तौर पर आर्देशिर ईरानी ने महबूब खान को बस चुन ही लिया था। लेकिन फिल्मों में पैसा लगाने वाले और तब के विशेषज्ञ ये मानते थे कि ऐसे लड़के पर दाव नहीं खेलना चाहिए क्योंकि बोलती हुई फिल्में बनाना अपने आप में एक बड़ा दाव है। महबूब खान को इस रोल से हटा दिया गया। वहीं उन्हें समझ में आ गया कि अभिनय में वो कुछ ज्यादा तीर नहीं मार पाएंगे, उन्हें जिंदगी में कुछ और करना चाहिए। यहाँ से एक नया जुनून शुरू हुआ, अपनी एक स्क्रिप्ट लिखने और उसका निर्देशन करने का। उन्होंने आखिरकार अपनी एक स्क्रिप्ट पूरी की और अलग अलग स्टूडियोज के चक्कर फिर से काटने लगे। प्रोड्यूसर्स उनकी कहानी सुनते उन पर हंसते और उन्हें दरवाजा दिखा देते। आखिरकार सन 1935 में एक प्रोड्यूसर को उनकी कहानी पसंद आई और तब आई महबूब खान की निर्देशित पहली फिल्म अल हिलाल। ये फिल्म सिसिल बी डिमेलो की जानी मानी फिल्म साइन ऑफ द क्रॉस से प्रेरित थी। फिल्म चल पड़ी और महबूब खान की गाड़ी भी चल पड़ी। लगभग यही दौर था जब चिमनलाल देसाई के सागर मूवी टोन में महबूब खान बतौर विलन काम करते थे और अच्छे खासे पैसे बना रहे थे। इसी दौरान सागर मूवी टोन ने उन्हें निर्देशन का मौका दिया। सन 1936 में महबूब खान ने डेक्कन क्वीन फिल्म बनाई। सन 1939 में आई एक ही रास्ता। सन 1940 में अली बाबा। सागर मूवी टोन के लिए उन्होंने सन 1940 में बनाई अपनी फिल्म और अली।

फिल्मों का सागर मूवी टोन और नेशनल स्टूडियोज की फिल्मों का निर्देशन करते रहे। सन 1940 में आई फिल्म औरत नबू खान के करियर की एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। सन 1942 में महबूब खान ने बनाई फिल्म रोटी और उसके बाद फिल्म

अनमोल लहरी के कलाकार थे नूरजहां, सुरैया और सुरेंद्र। इस फिल्म के गाने तंदीर नकवी ने लिखे थे और संगीत नौशाद का था। 11 नवंबर 1946 को रिलीज की गई ये फिल्म

बेहद महत्वपूर्ण फिल्म आई अंदाज। कलाकार थे दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर फरीदुम ईरानी थे। 26 अगस्त 1949 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक प्रेम त्रिकोण थी। इसके गाने मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और संगीत नौशाद।

सन 1952 में रूप खान लेकर आए अपनी बेमिसाल फिल्म आन, जिसके कलाकार थे दिलीप कुमार, मिमी, प्रेमनाथ और नागिरा। संगीत प्रसाद का था। ये फिल्म 4 जुलाई 1952 को रिलीज की गई थी।

साल 1954 महबूब खान की फिल्म वाली अमर। 1 अक्टूबर 1954 को रिलीज इस फिल्म के कलाकार थे दिलीप कुमार,

किया था बतौर स्पॉट बॉय शुरू की हो और जिसके जहन में हो अनमोल ऊंचाइयों को छूने के सपने। उस कलाकार ने मुंबई फिल्म उद्योग को दिया हॉलीवुड स्टाइल का पहला फिल्म स्टूडियो महबूब स्टूडियोज। महबूब स्टूडियोज का आगाज सन 1952 में हुआ। मुंबई के बांद्रा में स्थित इस स्टूडियोज में आज भी फिल्मों की शूटिंग की जाती है।

भारत के इतिहास में 1957 का अक्टूबर महीना बड़ा मायने रखता है। इसी साल 3 अक्टूबर को यानी 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती अस्तित्व में आई थी और विविध भारती पर प्रसारण शुरू होने के कुल 23 दिन बाद रिलीज हुई थी महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। रिलीज डेट है 25 अक्टूबर 1957। भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक कालजयी फिल्म। कलाकार नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। दिलचस्प बात ये कि ये फिल्म महबूब खान की ही 1940 में आई फिल्म औरत का रीमेक थी। इस फिल्म की पटकथा और संवाद एस अली रजा, वजाहत मिर्जा और महबूब खान ने मिलकर लिखे थे। संगीत नौशाद का था, गीत शकील बदायूनी के। मदर इंडिया भारत की एक बेमिसाल फेमिनिस्ट फिल्म। महबूब खान एक स्त्रीवादी फिल्मकार माने जाते हैं, एक ऐसे फिल्मकार जो महिलाओं के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, चाहे उनकी फिल्म आम हो

सशक्त न्यायिकाओं की भूमिकाओं वाली ये फिल्में सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद की जाएगी। मदर इंडिया को तो एकेडमी अवार्ड्स के लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था। ये अलग बात है कि ये फिल्म पुरस्कार जीत नहीं पाई, लेकिन विश्व स्तर पर जितना हंगामा मदर इंडिया ने उस जमाने में किया

जिसे अभी और आसमान छूने थे, जिसे कामयाबी की और बुलंदियां छूनी थी, जिसके जहन में सपनों की फसल लहला रही थी, लेकिन वक्त ने उसकी रफ्तार को रोक लिया। 28 मई 1964 को सिर्फ 56 बरस की उम्र में महबूब खान ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया महबूब खान का सिनेमा और सिनेमा की महबूब खान की विरासत महबूब स्टूडियोज। आज भी महबूब खान को अपने समय से आगे का फिल्मकार माना जाता है। महबूब खान के सम्मान में भारत सरकार ने एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था, जो डाक टिकट के संग्रहकर्ताओं के लिए एक अनमोल विरासत है। महान फिल्मकार महबूब खान को हमारा

नवीन कुमार महबूब खान पर शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह और प्रस्तुति रमेश गोखले।

से खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। दर्द दिल का चिराग गोया बड़ी मुश्किल से जलाया है, आज फिर बेताबियों ने खुद को घिरा पाया है। मोहब्बत के नशे मन में उनके कदमों के निशान ढूंढते हैं, फूलों में ओस की नाजुकी नगमों में तराना ढूंढते हैं। दिल के आंगन में मेरे चुपके से आता है कौन, मेरा सब्र हर घड़ी यूं आजमाता है कौन।

ये इंतजार भी अजीब शय है, हर पल दिल उनके हुजूर ही रहता है। खास कुछ बेताबियों के निशान देखे कहीं कहीं हमने, है चांदनी के शरारों सा शफाक हुस्न उनका। कलियों की सादगी कांधों पे करवटें लेती जुल्फे, लबों पे मुस्कुराहट, तो भला फिर ऐसी तस्वीर कहाँ।

जब जब पुकारा है, बात क्या चाहिए, सब कुछ मोहब्बत पे वारा है। ये ख्वाब नहीं अफसानाए हकीकत है, दो घड़ी मिल बैठे चांद से आंखें मिलाएं, चलो कुछ देर के लिए दुनिया से जुदा हो जाएं।

भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं छाया गीत। छाया गीत कार्यक्रम के कुछ और लम्हे आपको सुनाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: 뜻의 있음에 앞서게 해야 때리품 차야기. 예후지 모양 쓰임 예스다른 기대시니 예시군 격같들이 예풀은 기바리 해프자음이 예나자리 제스치나르키 빠뚜 빌키 무하벗기 코이 이바렛토 क्या जानी क्या दिल का हाल होता है बूंद जब लरसती है बादलों की घटाओं से
1: नजर को जुल्फ से

मुकुश उलझनी बहुत मुश्किल है, ये दुनिया की रवायतें बहुत मुश्किल है। दिल का मामला है, हरफों में कब बयां होता है, ये जिगर का तीर है, मुश्किल से निकलेगा जो भी साथ निकलेगी, अगर ये दिल से निकलेगा।

की मुस्कुराहट की कसम खा के ये हवाएं चलती हैं, शबनम ने इन्हीं होठों से जरूर ताजगी चुराई होगी, गुलों ने हवा की लाली आपसे ही पाई होगी, रात फूलों में भंवरों का कैद हो जाना, चुपके से चांद का तकना, मोहब्बत शेर ही कुछ ऐसी है, तेरा मगरूर हो जाना, मेरा मशहूर हो जाना।

0: दो जून सगी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई,
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग। हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन 3 बजे।

गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने

0: मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नियमित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
1: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमान के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ बीके शिव कुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गयी। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां नया हाईकमान के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधीन्द्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. मानिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर है या संयुक्त स्वामित्व में है। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय ये चैंपियनशिप 31 मई को सम्पन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।